एफएम अध्यात्म ज्योतिको प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुनिरहन प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हरेक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनाञ्जली प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8

कोस्ट की लंबाई चौड़ाई में बनाया। इस महल की चार दीवारी में सुंदर बाग बगीचे फुलवारियां तालाब बनाए गए। इसमें हंस मोर और अन्य पक्षियों को बसाया गया। इस रमणीक और मनोहारी भवन में

आप लोग उत्तर दिशा में जाइए, जो भी प्राणी सबसे पहले आपको मिले उसका सिर काट कर ले आइए और इस बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कीजिए। देवताओं के जाने के बाद भोलेनाथ शिला पर बैठकर देवताओं के विषय में सोचने लगे।

0: रोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

राधाकृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधाकृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

करते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

0: भोलि त्यहाँ फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मारौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्सी

0: 13 न्यू रोड काठमाडौँ राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8

0: रेडियो काठमाडौँ राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
1: एफएम अध्यात्म ज्योति शान्ति रेडियो।

अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या।

साधना करेगा वो सारे सुख पाएगा, धन और सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बालक एक दंत गणेश के नाम से विख्यात होगा। उसी समय से